0: 今天，人们依旧迷恋它莫可名状的硫化物气息，深邃又上头。
1: 那么咱们，黑了。OK。
0: 哈曼德的入职培训还剩下最后一步，二哥给他准备了一份新奇礼物。
1: मजा है मजा बड़ी तरह और तो आप कह रहे कुछ नहीं होता एंड तक पहुंच गई थी यार
0: 火焰理发诞生于街头，是极具观赏性的巴基斯坦洗剪吹。哈曼德第一次体验，12年前父亲带着一家人来到这里做小吃生意，这也是几个孩子长大后的第一份工作。小吃摊位于人流量最大的德里门。
1: ये भाई जान कितने? पप्पू गोल का पत्थर है छोटे जान दा।
0: 薄脆外皮包裹绵软扎实的馅料，这就是小脆球。杏子酱、酸奶浓郁甜蜜，一碗灵魂料汁是标配。
1: डाल दिया फ्री तुसी खा लेते ने ना फ्री फ्री वाले तुहानू खवाए ने ना
0: 小脆球价格亲民，是轻巧的社交食物。它是容器，是餐具，也是食物本身。一口下去，口舌欢畅之后，料汁的余香久久不愿离去。过了今晚，哈曼德将接替哥哥，站在这个人潮涌动的巴扎。